0: दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम।
1: बेस्टा विजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेश कर देने सरब सांची कुर्बानी।
2: सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके।

की सुते है एडी गूढ़ी नींद आई है ये एक मेरी पास्ता भी नहीं बन निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत दिता है और उसनू कोई ना कोई रोग लगा ही कोई उसनू झला कहना है कोई दीवाना कहना कोई बावला कहना मैं चुप कर गया मैं खामोश हो गया लोकां दे बच्चे खेलते हैं पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेलते होर बच्चे माता पिता तू आके चीजा मंगते पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं खाते पता नहीं कीड़ा रोग अंदर जाके सोता है तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया ही जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके तो ममता की मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च बुरकी नहीं पाई जिस मां का पुत भुखा सो गया उस मां नू नींद नहीं दी पुत सो गया है मां जाके उठा दी काका भुखा क्यों सो गया एक बुरकी तो वो उठ पाए मां दी आंदरा ठर जाए बच्चा रज के प्रसाद छक लवे मां पहले रख ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत माता तृप्त इना ख्याल इना विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नू पुत्री सुन गुरु नानक एक पर वेखण वाली वखो वक्त तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई चंदो रानी जाने सरबंधी जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जाने रब रूप मेरो भाई श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर पराए बुलार को प्रतीत भली आई है श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं कराई हटी भावना सब तो वड्डी जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मिल गया विश्वास ही वड्डी विश्वास ही सब तो वड्डी असी कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मथा भी टेक पर मथा टेक के भी
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ।

अपने शरीर की परवाह नहीं, लोकां दे बोल कबोलां दी परवाह नहीं, हर वेले सेवा विच डटे रहे, जुड़े रहे सेवा विच, ते तीसरे गुरु नानक बन गए। कितने वरदान मिले सेवा करके। गुरु अमरदास निमाणियां दा मान, नितानियां दा तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दा आसरा, निगत्यां दी गत, निपत्यां दी पत, निधरियां दी धिर, एडियां बख्शिशां कित्थों मिलियां, सेवा करके मिलियां। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन्हां ने सेवा कीती गुरु नानक दे दर दी, ए मान सत्कार उन्हां नूं ही प्राप्त होया।

मेरा कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तू भले

0: खसम हमारा ता मेरा अंतर जामी जान।
1: मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ करन कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा, जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, ओदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानदा, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकदी। किनू अंत

0: मानुख अब माने प्रभु मेरा अंत जामी जान।
1: ओ प्रभु सब कुछ जान दे साहब आखदे ने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर।
0: जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना
1: ते आके गुरु अग्गी अरदास कर,
0: ओ गुरु भावनी पूरी कर देवे।
1: खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है,
0: इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए।
1: जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक्को जरा।
0: जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया
1: है, ऐसा दरबार कोई
0: सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे,
1: चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दे दरबार च आए
0: कि असी खाली चोली चले जाइए
1: कदी हो नहीं सकता।
0: आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नाल मंग कर लई
1: ते प्रभु कड़ा है
0: प्रभु मेरा अंत जामी जान, तू करता सब किछ जानदा।
1: गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए,
0: दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है।
1: आके कहिए तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए,
0: मेनू की लोड़ीद है, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं।

बेखूना चात्र को क्यों कर तृपतावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे, पावन लोभी कुसुम बांस का मिल आप बंधावे। क्यों संत जना हर पीत है देख दर्श अगावे, हर बिन रह न सको एक राती। एक रात भी गैप पैदा है ना, ती परमात्मा में ते मर जाना, जीवत नहीं रह सकता, पर सानू ते दिन ही बीत जाते ने, महीने लंघ जाते ने, साल बदी दिन आ जाते ने, पर कदी ख्याल ही नहीं किया, कदी सोचिया ही नहीं, कदी विचार ही नहीं किया कि असी भी ऐसी तरफ पैदा कर ली, जिन्ना चिर गुरु दरबार विच ना आईए सानू भी शांति ना मिले। ऐसा प्यार होना चाहिए, हर बिल रह न सको एक राती। किवें जो अमले जो बिन अमले अमली मर जाई है, जो हर बिल

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब नेजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धड़क धार अणियर धनसबान और उसके तीर जड़े ने अणियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वह वज जा मुड़के कढ़े जा सकते ते आदि बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वह बाहर नहीं आते। जो एक बार अंदर धस जाना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी, वोदिया दो कड़िया होंदिया एवं मुड़िया हुई, एक सीधी होंगी तो दो एवं मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहिंदिया हुण आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी, इसलिए जे मेरिया भैणा कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली, यह हाल नहीं सी होना जिहड़ा होया। पता की हाल है, सरदार साहब होनी सीसगंज साहब दर्शन करने आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए, उन्होंने नहीं सी पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाइया हुई सी, एक ने सरिया मारिया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वो दाली भी सिखा की चट फूकते थे, उन्हें अग लाती उत्थे सड़ बह गए। जिहड़ी बीबी जी सी बेचारे बड़े मायूस घबरा गए, भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना, कौन ना ते तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क धार अलियर ना कबंध कोरड़ा, तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी ते जाके हुण वीसीआर वेखना सी, ये कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी, गहने पाए सी उन्हां दुष्टा ने, एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क दे विच शरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी, दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साढ़े ते उपकार किए, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया, कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब एवं सिंह सजे से, उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुसी उठो अपने साहबजादे नूं कहो उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हां कोल एड्रैस लै लो और उस देवी नूं हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित दे घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ। उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिया करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कई नहीं जाती, लेकिन मैं कहना सिंगो ए पांच शस्त्र रखो, धड़क धार अणियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल आंदरा, कमंध कोरड़ा, कमंध कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है, ये सरिये लैके आउंदे सी ना मारन, वह सरिया लैके जो आवे कमंध कोरड़ा ऐ भुआ के सरिये ते मारी दा, वह फिर ऐ वल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा, खिच के सरिया अगले का अपने हाथ फड़ लेता, उन्होंने हथे कर सीता एक ही छुट्टी का बस फिर बोरे सो दिया। इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो, यह तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र की धार नहीं बनना है, डरना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ए खंडे का अमृत सब सिखाया, खंडे का, खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी, कृपान का भी सिखा सकते और भी किसी चीज खंडे का, खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं, मौत खंडा, खंडे का अर्थ है मौत, तो महाराज ने उन्हू पानी घोल के सिख न प्यारता, मौत घोल के सिख पी गया, सिख गुरु का सिंह मौत घोल के पी गया, तो दुष्ट कहता मैं तेन वेख लूंगा मार दूंगा, तो सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਓ, ਕਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया जो फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलाड़े होए बंदूक लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल तो उन्हें रात ही खोले से डंडे इन्होंने हाथ ही फड़ाते से, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असं डे सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हाँ जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप किते रहे ते तुहानू इन्होंने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे सार देना, तीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। महाराज ने प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्होंने अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह हो सी वह इन्होंने नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बब्बर शेर जिमें बब्बर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग स्पच्छ बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर परबते ता सौ दिवाले पावेंगे, पर पार पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनया एक तुक, निक्षे जिम केर परबते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हों जो फिर परबत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्होंने फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, अगे की है सिंह बुके सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होवा, ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली तो जकारे छड़ते पज पै पज के पांच सत पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजे होने जदों उन्हें वेख्या दुष्टा तो ये ते आ गए तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली वो 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा 10-15 दंद टुट गए पाँ गोगे गोडे टुट गए है जी जो भज उठे नाले ऐ वेखन नाले भजन तो फिर एक उत्थे खलो गए इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां ना असी बीबी मारते हां ना असी बुढ़े मारते हां ना असी बच्चे मारते हां ना असी भजदे मारते असी भजदे नहीं मारते तुसी प्यो दे पुत्त खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जे आए ने उन्हां नूं छड्ड के लाल किले वाल भज उठे वह पहला ही अगे भज उठे है जी 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने मैं तो कहना महाराज इन्हों सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहते हैं।

देहन फिर ओ परम परिपूर्ण परमात्मा सदा उना जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान, हे प्रभु मैं तेरा नाम

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रहे, फिर भी उसके हुक्म विच रहे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके ऊपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे, ते फिर समा आ बने। जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है। तां चंदू दीवान जिसनूं अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब निवाज, इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है, इन्हां ने गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती, गरीब निवाज किथे तुरे हो? आख्या, बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं, किसे जरूरी काम नू चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए। पुब्बां निकलियां बाबे बुड्ढे दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरा मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

जिस वेले आख्या गुरुवर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना ते ए सब नूं आखना कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणी विच रह के उस दे हुकम विच अपना सिर नवाए। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक दे मुख उजले गेती छट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम शिखादिक कथिक नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान।

मिला श्रीधर बिनवंत नानक बिनवंत नानक बिनवंत नानक नानक बिनवंत नानक मिला श्रीधर सगल आनंद रस बना।

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी।

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत हो गए, वो समझदा कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, ए जड़ी मैं है एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और ये भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नु जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है, और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नू दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नू जपा और मेरे नाल जोड़। साहब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नू दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापा तो झूठ तो वो बच सकन।

जा सिफत करी अरदास। कई लोग कहते जदों भी पाठ करन बैठिए, भजन करन वास्ते बैठिए, मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार नहीं, मन दी पटकना ताई खत्म हो सकती है। मन दे परम ताई दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करिए और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो, दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे और परमेश्वर दी खुशी भी प्राप्त होगी।

और जिन्ना ने इस प्यार नू जान लिया उन्हां दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तो उत्ते हो जाता है। क्योंकि साहिब जी बयान करते हैं जिन्हां ने नाम दा रस पीता उन्हां नू दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए जो इस शब्द की भावना है जो इस शब्द विच प्यार है उस प्यार वल आपा अपना मन जोड़ी रखना है और विचार करिए कि जिन्ना ने प्यार किया उन्ना दे मन की तड़प किस तरह दूर होती है और किस तरह उन्ना नू

गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी के पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते ने पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी से लंबे पे एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पे ने इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकते ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने हिस्सा दिलाई सत करतार सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओह धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़के है तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन पे चोला सी के रखती है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन हे नहीं हो सकदा।

समरथ दें, गुर समरथ दें। राजन में तू राजा कहिए, घूमन में घूमा समरथ दें। राजन में